0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आप ली मानसर।
1: कृषि संदेश।

0: यह दोहा कबीर साहब के वैराग्य का चरम है। श्मशान के इस दृश्य के माध्यम से वे जीवन की नश्वरता को इतनी नग्नता से सामने रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व पर गहराई से विचार करने को मजबूर हो जाए। श्रोताओं, कबीर साहब श्मशान का एक ऐसा भयावह और सत्य दृश्य खींचते हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। वे कहते हैं, हाड़ जले जो लाकड़ी, ये हड्डियाँ जिन्हें हम अपने अस्तित्व का आधार मानते हैं, आग में सूखी लकड़ियों की तरह जलती हैं। केस जले जो घास, और वे बाल जिन्हें हम रोज संवारते थे, वे घास फूस की तरह एक ही पल में स्वाहा हो जाते हैं। सब तन जलता देखी करी, जब कबीर उस पंच तत्व के पुतले को अग्नि की लपटों में विलीन होते देखते हैं तो वे कहते हैं, भया कबीर उदास। दोस्तों, यहाँ कबीर की उदासी हार की उदासी नहीं है, यह उस सत्य को देख लेने की उदासी है कि जिस शरीर के लिए हमने पूरी जिंदगी नफरत पाली, बेईमानी की और ईर्ष्या में जलते रहे, उसका अंत इतना साधारण और इतना निष्ठुर है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई कलाकार अपनी पूरी उम्र एक पेंटिंग बनाने में लगा दे और अंत में उसे अपनी ही आंखों के सामने राख होते देखें। कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर अंत यही है तो फिर इस मिट्टी के घरौंदे को के लिए इतना गुरूर क्यों। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने शरीर की मर्जी से हटकर अपनी आत्मा की ओर देखिए। हम जो कुछ भी बाहर बटोर रहे हैं वह सब लकड़ी और घास की तरह जलने वाला है, तो फिर साथ क्या जाएगा। साथ जाएगी वह करुणा जो आपने दूसरों को दी, वह प्रेम जो आपने बांटा और वह नाम जो आपके भीतर जपा। आज कोशिश कीजिए इस देहाध्यास यानी शरीर के मोह से थोड़ा ऊपर उठने की। शरीर की सेवा जरूर कीजिए पर इसे अपना सब कुछ मत मानिए। जब आप यह जान लेते हैं कि यह एक तन ही एक दिन यह तन जल जाना है तो आप दूसरों को माफ़ करना सीख जाते हैं, आप विनम्र हो जाते हैं। आज अपनी नश्वरता को याद कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में अमरता का कोई बीज ना पनप सके। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। लहलाती पीली सरसों की दमक, गिद्दा की ताल और प्रेम के प्रतीक सोनी महिवाल का राज्य पंजाब, ऊंचे पूरे कद काठी के मेहनतकश नौजवान, सिर पर साफा और कुड़ियों की धानी चुनर, साथ ही सरसों का साग और मक्की की रोटी का लाजवाब स्वाद, कुछ ऐसा ही दृश्य उभरता है मस्तिष्क में जब भी बात आती है पंजाब की। देश की स्वतंत्रता में भी पंजाब की अपनी अहम भूमिका थी। कई ऐसे वीर क्रांतिकारी हुए जो पंजाबी तो थे ही, साथ ही निडर और साहसी भी थे, जिनका वचन उनकी आन बान और शान था। हरिकिशन तलवार के पिता गुरुदास माल तलवार थे। दोनों ही पिता पुत्र की शहादत स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शायद एकमात्र उदाहरणों में से एक है। हरिकिशन का जन्म सीमांत प्रांत के मर्दान जिले के गल्लाढर स्थान पर हुआ था। पिता गुरुदास मल महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी के प्रशंसक और पाठक थे। जब भारत की आजादी का बिगुल बजा तो गुरुदास मल ने अपने बेटों को आंदोलनकारी बनाने का संकल्प तो ले लिया, साथ ही स्वयं प्रशिक्षित भी किया। सन 1930 में हरिकिशन और छोटे भाई भगत राम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भारत से बाहर जाने में पूर्ण रूप से सहायता की थी, जिसकी सजा के तौर में दोनों भाइयों को पेशावर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। राजनैतिक गतिविधियों और आंदोलनकारियों से जेल ठसाठस भरी थी। अंग्रेज इस मुसीबत से निजात पाना चाहते थे, जिसके लिए उपाय ये निकाला कि अंग्रेजी भाषा में लिखे एक फॉर्म में ये कहकर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे कि ये तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर हैं, जबकि असलियत थी कि वो एक प्रतिज्ञा पत्र था, जिसमें हस्ताक्षर करने का मतलब ये है कि वो भविष्य में कभी भी किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होगा, अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी अपराध नहीं करेगा। अंग्रेजी भाषा में लिखे जाने के कारण बात उस समय तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब हरिकिशन घर पहुंचे तो पिता ने बहुत गुस्से में कहा कि उस फॉर्म पर हस्ताक्षर करके परिवार की मर्यादा को भंग कर दिया है। बस फिर क्या था, हरिकिशन तुरंत ही कृत संकल्पित हो गए। उन्होंने ठान लिया कि ब्रिटिश सरकार से वो अवश्य ही बदला लेकर रहेंगे, चाहे उन्हें जो भी करना पड़े।

बचपन से पिता ने हरिकिशन के मन में देशभक्ति कूट कूट कर भर दी थी, इसलिए बालक होते हुए भी वो क्रांतिकारियों के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए थे। जब काकोरी कांड का मुकदमा चला तो अखबारों में छपे क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के बयानों को वो बड़े ध्यान से कई कई बार पढ़ा करते थे। मन ही मन सरदार भगत सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था उन्होंने और चल पड़े थे शहादत की राह पर। हरिकिशन के मन में ये बात घर कर गई थी कि अहिंसात्मक आंदोलन से देश को स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, तो उन्होंने क्रांति और विद्रोह का रास्ता चुन लिया। ब्रिटिश सरकार को सबक सिखाने के मकसद से योजना बनाई गई कि पंजाब के गवर्नर से ही हिसाब चुकता किया जाएगा और इसके लिए एक तेज शूटर की जरूरत थी। दैनिक प्रताप अखबार के क्रांतिकारी संपादक चमनलाल कपूर जी हरिकिशन के संकल्प से वाकिफ थे। हरिकिशन की तो दिल की मुराद पूरी हो गई। स्वयं उनके पिता गुरदास माल ने अपने पुत्र को खुश होकर नजदीक से निशानेबाजी का विधिवत प्रशिक्षण दिला दिया था। योजना के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 23 दिसंबर सन 1930 को संपन्न होना था। समारोह की अध्यक्षता के लिए पंजाब के गवर्नर जेओफ्रे मॉन्टमोरेसी करने वाले थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उद्बोधन था। योजना के अनुसार 20 दिसंबर सन 1930 को चमनलाल कपूर जी हरिकिशन के साथ लाहौर पहुंच गए। खास बात ये थी कि इस बात का ध्यान रखना था कि फायर के बाद भागना नहीं है ताकि निर्दोष लोगों को नुकसान ना हो। 23 दिसंबर सन 1930 को हरिकिशन जी सूट बूट पहनकर एक पुस्तक को बीच में से काटकर उन्होंने रिवॉल्वर को उसमें छुपा दिया और पहले ही वो सीनेट हॉल में पहुंच गए अपनी क्रांतिकारी योजना को अंजाम देने के लिए।

जैसे ही दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ और विद्वान सभा भवन से जाने लगे, एक कुर्सी पर खड़े होकर गवर्नर पर हरिकिशन ने फायर कर दिया। निशाना चूक गया, गोली गवर्नर की बांह छीलती निकल गई। दूसरी गोली पीठ को छूकर निकल गई, लेकिन तीसरी गोली चलती इससे पहले ही डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नर के सामने आ गए। हरिकिशन को गिरफ्तार कर लिया गया और सलाखों में कैद कर दिया गया। जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। कड़ाके की सर्दी की रातों में भी उनको निर्वस्त्र करके बर्फ की शिलाओं के बीच दबाकर रखते थे। उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। इतनी नरकीय यातनाओं सहने के बाद भी हरिकिशन जैसे वीर क्रांतिकारी ने अपने नाम और पते के अलावा कुछ नहीं बताया। ब्रिटिश सरकार के इतने जुल्मों को उन्होंने धैर्यपूर्वक सहन किया और वो सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद के जय घोष करते रहे। सरकार हैरान थी कि ना जाने हरिकिशन किस मिट्टी का बना है, इतने वार अकेले सहन कर रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। वो टूटते भी कैसे? भारत माता के वीर सपूतों को अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता तो हर कीमत पर प्राप्त जो करनी थी। नामी वकील मोहम्मद आसिफ अली ने हरिकिशन जी को बचाने की बहुत कोशिश की, पैरवी की, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। हरिकिशन ने अपना बयान उर्दू में लिखकर दिया था कि ब्रिटिश शासन अत्याचारी है, उनकी सशस्त्र सेना ने निहत्ते पठानों पर 30 अप्रैल सन 1930 को गोली चलाकर अनेक पुरुषों, महिलाओं और मासूम बच्चों को मार डाला था। मैं जानता हूं कि मेरा भविष्य क्या है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मेरे बलिदान से यदि स्वतंत्रता थोड़ी और नजदीक आए तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं हजार बार बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। चाहता हूँ कि मैं बार बार भारत में ही जन्म लूँ और हर बार अपने देश के लिए बलिदान हो जाऊँ। मेरे मरने के बाद भी हजारों हरिकिशन पैदा होंगे। मैं चाहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर अपने अत्याचार बंद करे, हमारा देश छोड़ दे। उन्होंने अपना बयान इनकलाब जिंदाबाद के साथ ही समाप्त कर दिया। जिस जेल में हरिकिशन थे उसी जेल में सरदार भगत सिंह जी को भी रखा गया था। अपने क्रांतिकारी गुरु भगत सिंह से मिलने से मना करने पर हरिकिशन ने अनशन कर दिया। बाद में 9 दिनों के बाद भगत सिंह जी के हाथों दूध पिलाकर ही हरिकिशन ने अपना अनशन समाप्त किया। 9 जून सन 1931 को लाहौर की मियांवाली जेल से सुबह 6 बजे हरिकिशन जी ने फांसी के फंदे को इनकलाब जिंदाबाद कहते कहते हंसते हंसते चूम लिया। हरिकिशन के पिता को भी हिरासत में लेकर कई यातनाएं दी गईं और 25 दिन बाद यानी 4 जुलाई सन 1931 को उनको भी फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारी पिता पुत्र की ऐसी गौरवशाली साहसिक शहादत को हम शत शत नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री पंकज राग ने, समन्वय किया संजय यादव ने और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। जय हिंद।

0: मैं हूँ महक और प्रोग्राम है खाना बदोशों की दुनिया। किसी नई अनजान जगह जाने का कितना एक्साइटमेंट होता है ना? मुझे बचपन से शौक था कि मैं एक बार इंडिया से बाहर जाके रहूं, लेकिन मेरा सपना तो वो पूरा नहीं हो पाया, पर अर्शिया का पूरा होने वाला है। अर्शिया की एक सुमन आंटी भी हैं, जिनका ड्रीम था कि उनका भाई पढ़ लिख कर किसी बड़े शहर में एक अच्छी सी नौकरी करे और फिर वो उससे मिलने जाएं। मैं बोलना भूल गई, सुमन आंटी ना एक्चुअली अर्शिया के घर पे हेल्प करती हैं। पर क्या इससे इन दोनों के सपने अलग हो जाते हैं?
1: मॉम, मॉम, आई गॉट थ्रू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बस अभी कॉन्फर्मेशन मेल आया है।
2: दैट्स वेरी गुड, कब से ज्वाइन करना है और फीस कितनी है बेटा?
1: अभी टाइम है मॉम, आई होप वीजा जल्दी से हो जाए, फिर हॉस्टल भी देखने हैं। एक तो सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है, वहाँ पार्ट टाइम जॉब का भी पता करना पड़ेगा।
2: जॉब?
3: भाभी थोड़ा पैर ऊपर। दीदी तुम्हारी नौकरी लग गई क्या?
1: नहीं सुमन आंटी, एडमिशन हुआ है।
2: अरे सुमन, अर्शिया अब विदेश जाएगी पढ़ने। अच्छा सुन, अपने भाई को भेज देना, आज या कल बड़े वाले सूटकेस उतारने थे, लगे हाथों स्टोर की सफाई भी हो जाएगी।
3: जी भाभी, जिस दिन उसकी कॉलेज से छुट्टी होगी उस दिन ले आऊंगी साथ।
1: सुमन आंटी, आपके भाई के कॉलेज में एडमिशन हो गया?
3: हाँ हो गया दीदी, बस अब कहीं उसे काम मिल जाए। दीदी आपकी जान पहचान में किसी नौकरी का पता होगा उसके लिए?
2: अरे उससे क्या बोल रही है, मैं इनसे बोल दूंगी।
3: अच्छा जा रही हूँ।
1: मॉम, आप पापा को बोलोगी भी इनकी जॉब के लिए?
2: देखूंगी, नौकरियाँ पेड़ पे लगती हैं क्या? इसका तो रोना ही नहीं खत्म होता, पहले से ही 8 लोग रह रहे हैं एक कमरे में, अब ये इसका भाई भी आ गया, जबकि हमसे बड़ा घर है इनका गाँव में। पर नहीं, सब यहीं रहेंगे, पता नहीं क्यों आ जाते हैं यहाँ। एनीवेज बेटा, तुम लंदन वाली मासी के यहाँ पर ही रहना और वहीं पर जॉब भी ढूंढ लेना, ओके?
1: ऑलराइट मॉम।
0: संविधान के आर्टिकल 19 के अनुसार हर भारतीय नागरिक भारत में बिना किसी रोक टोक या पाबंदी के कहीं भी अपना घर बसा सकता है, ये उसका अधिकार है। और सेंसस 2011 के मुताबिक 450 मिलियन यानी कि लगभग 37% लोग इंडिया में प्रवासी हैं। तो फिर कुछ लोगों के सपने जायज और कुछ के नाजायज, ऐसा क्यों? कौन होते हैं ये प्रवासी, क्यों शौक होता है इन्हें शहर आने का?
4: जी मेरा नाम आशीष शर्मा है, मैं दिल्ली 2001 में आया हूँ और यहाँ पे मतलब कि पढ़ने के सिलसिले से आया था मैं। तो मतलब कि 10th पास कर लिया, 12th ओपन से फॉर्म भर रखा हूँ मैंने, तो मतलब कि मेंटेन नहीं हो पा रही है, मतलब कि काफी महंगाई हो रखी है, इसलिए मैंने अपना वर्किंग करने लगा हूँ।
5: मेरा नाम जुहा अहमद है। एम्प्लॉयमेंट से देखा जाए तो यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नौकरी भी बाहर ज्यादा अच्छी मिल सकती है।
6: मेरा नाम माधादीन है, मेरा गाँव झांसी है। गाँव से आते हैं हम लोग मजदूरी करने के लिए यहाँ पर, क्या काम धंधा मिले, 500 रुपए मजदूरी बने, रोज के आमदार रोजमर्रा की तरह काम करें।
7: माय नेम इज बालकृष्ण सिंह, मैं दिल्ली में करीब 8 साल पहले से आया था। एक्चुअली गांव में पिताजी खेती बाड़ी करते थे, अब मैं घर में बड़ा था, कमाने वाला कोई था नहीं, तो मुझे गांव से दिल्ली आना पड़ा काम के सिलसिले में।
0: किसी नई जगह में रास्ता भटक जाओ तो कुछ पल के लिए अजीब सा डर लगता है, नहीं? और फिर कोई एक सज्जन टकराता है जो सही रास्ता बता देता है, बहुत हेल्प करता है और फिर सारा सफर आसान लगने लगता है। तो क्यों ना अगली बार आप किसी रिक्शे वाले भैया या काम वाली आंटी के लिए वो सज्जन बन जाए।
8: ये था माइग्रेशन पर यूनेस्को दिल्ली का एक खास प्रोग्राम।

0: आज मैंने धोबी, न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला, बाइक की तनख्वाह, महीने के सारे पेमेंट्स कर दिए हैं। मेरा वॉलेट एकदम हल्का हो गया है। मैं हूँ महक और प्रोग्राम है खाना बदोशों की दुनिया। खर्चों का तो वैसे कोई अंत ही नहीं होता है, पर अगर सोचा जाए तो हमारे इन्हीं खर्चों से एक्चुअली किसी का घर भी तो चल रहा है ना, या यू कहें कि किसी की जिंदगी भी तो चल रही है ना?
1: भैया 250 ग्राम मूंगफली कैसे दी?
2: 20 रुपए की है।
1: हाँ देना।
2: आप शायद नहीं हैं यहाँ।
1: तुम्हें कैसे पता मैं इसी कॉलोनी की हूँ? तुम लोगों की कुछ ज्यादा ही खबर रखते हो। तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ रेजिडेंट वेलफेयर ने सभी आने जाने वालों का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कहाँ है?
2: अरे बिटिया नाराज ना हो, हम पिछले 10 साल से यहाँ रहते हैं, हम भी इसी कॉलोनी के हैं। वो देखो सामने गली के कोने में जो स्त्री करने वाली बैठी है ना, वो हमारी घरवाली है।
1: वो उस हरे बंगले की दीवार के आगे
2: जी
1: जो प्रेस करती है वहाँ, वो तो तिवारी अंकल का घर है।
2: तिवारी जी बड़े सज्जन आदमी हैं, अपने घर के नीचे का कमरा दिया हुआ है, हम वहीं रहते हैं। किराया देने की जगह हम उनके फ्री में कपड़े प्रेस कर देते हैं, और मेरी दोनों बिटियाँ उनके घर में खाना भी पकाती हैं। तो बस भगवान की बड़ी कृपा है।
1: फिर तो तुम्हें सभी जानते होंगे यहाँ।
2: कुछ दिन पहले यहाँ नुक्कड़ पर दो लड़के कॉलोनी की एक लड़की को छेड़ रहे थे, तो हमने खींच के चप्पल दे मारी। उस दिन से आज का दिन कभी नहीं दिखे दोनों। ये लो बिटिया तुम्हारी मूंगफली।
1: सॉरी मैं आप पर यूं ही चिल्ला दी। आप ही के यहाँ पर मैं अपने और अपने पति के कपड़े इस्त्री करने देती हूँ। सॉरी। हाँ
2: अरे कोई बात नहीं बिटिया, कोई बात नहीं।
0: इस मूंगफली वाले भैया की तरह कितने ही ऐसे प्रवासी हैं जो शहर में अपनी पहचान किसी न किसी तरह बनाने में लगे ही हुए हैं।
3: मैं फरुखाबाद से दिल्ली आया हूँ 10 साल पहले। यहाँ सिलाई का और लहंगे का काम करता हूँ मैं। यहाँ पे मतलब 300-400 लड़के यहाँ साथ काम कर रहे हैं अलग अलग कारखानों में पूरी दिल्ली में। हम लोग चले जाएंगे, काम बंद हो जाएगा तो काफी लोगों को नुकसान होगा, होटल वालों को नुकसान हो जाएगा जहाँ से हम खाना खाते हैं। एक दूसरे से काम चलता है एक दूसरे का, तो उसी से मकान किराया भी निकालते हैं और क्विंटल से खाना भी खाते हैं, तो इसे कड़ी बंदी हुई है, दूसरे से चलते रहते हैं पूरी।
4: मैं जिला बलिया का रहने वाला हूँ। पहले दिल्ली में आया था, मैं डेंटल फैक्ट्री में काम किया था, फैक्ट्री बाहर गई पर मैं गया नहीं यहाँ से। मैंने कार भी सीख लिया, ड्राइविंग भी सीखा इसी रिक्शे चला करके। ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास, कार भी चलाता हूँ और ऑटो भी चलाता हूँ, बस यही तो है।
0: भारत में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार करीब 60% प्रवासी पुरुष और 40% प्रवासी महिलाएं बेहतर विकल्पों के लिए गांव से शहर की ओर आती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पापा भी 15 साल पहले शहर आए थे। अब चाहे मैं ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम करूं या रिक्शे वाले भैया रिक्शा चलाएं, हम दोनों ही तो मेहनत कर रहे हैं ना, पैसा कमा रहे हैं और अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर नजरिए में इतना फर्क क्यों? थोड़ा सोचिए और अपने रोजमर्रा का व्यवहार बदलिए।
5: ये था माइग्रेशन पर यूनेस्को दिल्ली का एक खास प्रोग्राम।

0: यह दोहा कबीर साहब के वैराग्य का चरम है। श्मशान के इस दृश्य के माध्यम से वे जीवन की नश्वरता को इतनी नग्नता से सामने रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व पर गहराई से विचार करने को मजबूर हो जाए। श्रोताओं, कबीर साहब श्मशान का एक ऐसा भयावह और सत्य दृश्य खींचते हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। वे कहते हैं, हाड़ जले जो लाकड़ी, ये हड्डियाँ जिन्हें हम अपने अस्तित्व का आधार मानते हैं, आग में सूखी लकड़ियों की तरह जलती हैं। केस जले जो घास, और वे बाल जिन्हें हम रोज संवारते थे, वे घास फूस की तरह एक ही पल में स्वाहा हो जाते हैं। सब तन जलता देखी करी। जब कबीर उस पंच तत्व के पुतले को अग्नि की लपटों में विलीन होते देखते हैं तो वे कहते हैं, भया कबीर उदास। दोस्तों, यहाँ कबीर की उदासी हार की उदासी नहीं है, यह उस सत्य को देख लेने की उदासी है कि जिस शरीर के लिए हमने पूरी जिंदगी नफरत पाली, बेईमानी की और ईर्ष्या में जलते रहे, उसका अंत इतना साधारण और इतना निष्ठुर है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई कलाकार अपनी पूरी उम्र एक पेंटिंग बनाने में लगा दे और अंत में उसे अपनी ही आंखों के सामने राख होते देखें। कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर अंत यही है तो फिर इस मिट्टी के घरौंदे को के लिए इतना गुरूर क्यों। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने शरीर की मर्जी से हटकर अपनी आत्मा की ओर देखिए। हम जो कुछ भी बाहर बटोर रहे हैं वह सब लकड़ी और घास की तरह जलने वाला है, तो फिर साथ क्या जाएगा। साथ जाएगी वह करुणा जो आपने दूसरों को दी, वह प्रेम जो आपने बांटा और वह नाम जो आपके भीतर जपा। आज कोशिश कीजिए इस देहाध्यास यानी शरीर के मोह से थोड़ा ऊपर उठने की। शरीर की सेवा जरूर कीजिए पर इसे अपना सब कुछ मत मानिए। जब आप यह जान लेते हैं कि यह एक तन ही, एक दिन यह तन जल जाना है, तो आप दूसरों को माफ़ करना सीख जाते हैं, आप विनम्र हो जाते हैं। आज अपनी नश्वरता को याद कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में अमरता का कोई बीज ना पनप सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM। Always heart touching.

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। लहलाती पीली सरसों की दमक, गिद्दा की ताल और प्रेम के प्रतीक सोनी महिवाल का राज्य पंजाब, ऊंचे पूरे कद काठी के मेहनतकश नौजवान, सिर पर साफा और कुड़ियों की धानी चुनर, साथ ही सरसों का साग और मक्की की रोटी का लाजवाब स्वाद, कुछ ऐसा ही दृश्य उभरता है मस्तिष्क में जब भी बात आती है पंजाब की। देश की स्वतंत्रता में भी पंजाब की अपनी अहम भूमिका थी। कई ऐसे वीर क्रांतिकारी हुए जो पंजाबी तो थे ही, साथ ही निडर और साहसी भी थे, जिनका वचन उनकी आन बान और शान था। हरिकिशन तलवार के पिता गुरुदास माल तलवार थे। दोनों ही पिता पुत्र की शहादत स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शायद एकमात्र उदाहरणों में से एक है। हरिकिशन का जन्म सीमांत प्रांत के मरदान जिले के गल्लाढर स्थान पर हुआ था। पिता गुरुदास मल महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी के प्रशंसक और पाठक थे। जब भारत की आजादी का बिगुल बजा तो गुरुदास मल ने अपने बेटों को आंदोलनकारी बनाने का संकल्प तो ले लिया, साथ ही स्वयं प्रशिक्षित भी किया। सन 1930 में हरिकिशन और छोटे भाई भगत राम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भारत से बाहर जाने में पूर्ण रूप से सहायता की थी, जिसकी सजा के तौर में दोनों भाइयों को पेशावर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। राजनैतिक गतिविधियों और आंदोलनकारियों से जेल ठसाठस भरी थी। अंग्रेज इस मुसीबत से निजात पाना चाहते थे, जिसके लिए उपाय ये निकाला कि अंग्रेजी भाषा में लिखे एक फॉर्म में ये कहकर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे कि ये तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर हैं, जबकि असलियत थी कि वो एक प्रतिज्ञा पत्र था, जिसमें हस्ताक्षर करने का मतलब ये है कि वो भविष्य में कभी भी किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होगा, अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी अपराध नहीं करेगा। अंग्रेजी भाषा में लिखे जाने के कारण बात उस समय तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब हरिकिशन घर पहुंचे तो पिता ने बहुत गुस्से में कहा कि उस फॉर्म पर हस्ताक्षर करके परिवार की मर्यादा को भंग कर दिया है। बस फिर क्या था, हरिकिशन तुरंत ही कृत संकल्पित हो गए। उन्होंने ठान लिया कि ब्रिटिश सरकार से वो अवश्य ही बदला लेकर रहेंगे, चाहे उन्हें जो भी करना पड़े।

बचपन से पिता ने हरिकिशन के मन में देशभक्ति कूट कूट कर भर दी थी, इसलिए बालक होते हुए भी वो क्रांतिकारियों के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए थे। जब काकोरी कांड का मुकदमा चला तो अखबारों में छपे क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के बयानों को वो बड़े ध्यान से कई कई बार पढ़ा करते थे। मन ही मन सरदार भगत सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था उन्होंने और चल पड़े थे शहादत की राह पर। हरिकिशन के मन में ये बात घर कर गई थी कि अहिंसात्मक आंदोलन से देश को स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, तो उन्होंने क्रांति और विद्रोह का रास्ता चुन लिया। ब्रिटिश सरकार को सबक सिखाने के मकसद से योजना बनाई गई कि पंजाब के गवर्नर से ही हिसाब चुकता किया जाएगा और इसके लिए एक तेज शूटर की जरूरत थी। दैनिक प्रताप अखबार के क्रांतिकारी संपादक चमनलाल कपूर जी हरिकिशन के संकल्प से वाकिफ थे। हरिकिशन की तो दिल की मुराद पूरी हो गई। स्वयं उनके पिता गुरदास माल ने अपने पुत्र को खुश होकर नजदीक से निशानेबाजी का विधिवत प्रशिक्षण दिला दिया था। योजना के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 23 दिसंबर सन 1930 को संपन्न होना था। समारोह की अध्यक्षता के लिए पंजाब के गवर्नर जेओफ्रे मॉन्टमोरेसी करने वाले थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उद्बोधन था। योजना के अनुसार 20 दिसंबर सन 1930 को चमनलाल कपूर जी हरिकिशन के साथ लाहौर पहुंच गए। खास बात ये थी कि इस बात का ध्यान रखना था कि फायर के बाद भागना नहीं है ताकि निर्दोष लोगों को नुकसान ना हो। 23 दिसंबर सन 1930 को हरिकिशन जी सूट बूट पहनकर एक पुस्तक को बीच में से काटकर उन्होंने रिवॉल्वर को उसमें छुपा दिया और पहले ही वो सीनेट हॉल में पहुंच गए अपनी क्रांतिकारी योजना को अंजाम देने के लिए।

जैसे ही दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ और विद्वान सभा भवन से जाने लगे, एक कुर्सी पर खड़े होकर गवर्नर पर हरिकिशन ने फायर कर दिया। निशाना चूक गया। गोली गवर्नर की बांह छीलती निकल गई। दूसरी गोली पीठ को छूकर निकल गई, लेकिन तीसरी गोली चलती इससे पहले ही डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नर के सामने आ गए। हरिकिशन को गिरफ्तार कर लिया गया और सलाखों में कैद कर दिया गया। जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। कड़ाके की सर्दी की रातों में भी उनको निर्वस्त्र करके बर्फ की शिलाओं के बीच दबाकर रखते थे। उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। इतनी नरकीय यातनाओं सहने के बाद भी हरिकिशन जैसे वीर क्रांतिकारी ने अपने नाम और पते के अलावा कुछ नहीं बताया। ब्रिटिश सरकार के इतने जुल्मों को उन्होंने धैर्यपूर्वक सहन किया और वो सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद के जय घोष करते रहे। सरकार हैरान थी कि ना जाने हरिकिशन किस मिट्टी का बना है, इतने वार अकेले सहन कर रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। वो टूटते भी कैसे? भारत माता के वीर सपूतों को अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता तो हर कीमत पर प्राप्त जो करनी थी। नामी वकील मोहम्मद आसिफ अली ने हरिकिशन जी को बचाने की बहुत कोशिश की, पैरवी की, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। हरिकिशन ने अपना बयान उर्दू में लिखकर दिया था कि ब्रिटिश शासन अत्याचारी है, उनकी सशस्त्र सेना ने निहत्ते पठानों पर 30 अप्रैल सन 1930 को गोली चलाकर अनेक पुरुषों, महिलाओं और मासूम बच्चों को मार डाला था। मैं जानता हूँ कि मेरा भविष्य क्या है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मेरे बलिदान से यदि स्वतंत्रता थोड़ी और नजदीक आए तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं हजार बार बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। चाहता हूँ कि मैं बार बार भारत में ही जन्म लूँ और हर बार अपने देश के लिए बलिदान हो जाऊँ। मेरे मरने के बाद भी हजारों हरिकिशन पैदा होंगे। मैं चाहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर अपने अत्याचार बंद करे, हमारा देश छोड़ दे। उन्होंने अपना बयान इनकलाब जिंदाबाद के साथ ही समाप्त कर दिया। जिस जेल में हरिकिशन थे उसी जेल में सरदार भगत सिंह जी को भी रखा गया था। अपने क्रांतिकारी गुरु भगत सिंह से मिलने से मना करने पर हरिकिशन ने अनशन कर दिया। बाद में 9 दिनों के बाद भगत सिंह जी के हाथों दूध पिलाकर ही हरिकिशन ने अपना अनशन समाप्त किया। 9 जून सन 1931 को लाहौर की मियांवाली जेल से सुबह 6 बजे हरिकिशन जी ने फांसी के फंदे को इनकलाब जिंदाबाद कहते कहते हंसते हंसते चूम लिया। हरिकिशन के पिता को भी हिरासत में लेकर कई यातनाएं दी गईं और 25 दिन बाद यानी 4 जुलाई सन 1931 को उनको भी फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारी पिता पुत्र की ऐसी गौरवशाली साहसिक शहादत को हम शत शत नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री पंकज राग ने, समन्वय किया संजय यादव ने और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। जय हिंद।

0: मैं हूँ महक और प्रोग्राम है खाना बदोशों की दुनिया। किसी नई अनजान जगह जाने का कितना एक्साइटमेंट होता है ना? मुझे बचपन से शौक था कि मैं एक बार इंडिया से बाहर जाके रहूं, लेकिन मेरा सपना तो वो पूरा नहीं हो पाया, पर अर्शिया का पूरा होने वाला है। अर्शिया की एक सुमन आंटी भी हैं, जिनका ड्रीम था कि उनका भाई पढ़ लिख कर किसी बड़े शहर में एक अच्छी सी नौकरी करे और फिर वो उससे मिलने जाए। मैं बोलना भूल गई, सुमन आंटी ना एक्चुअली अर्शिया के घर पे हेल्प करती हैं। पर क्या इससे इन दोनों के सपने अलग हो जाते हैं?
1: मॉम, मॉम, आई गॉट थ्रू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बस अभी कॉन्फर्मेशन मेल आया है।
2: दैट्स वेरी गुड, कब से ज्वाइन करना है और फीस कितनी है बेटा?
1: अभी टाइम है मॉम, आई होप वीजा जल्दी से हो जाए, फिर हॉस्टल भी देखने हैं। एक तो सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है, वहाँ पार्ट टाइम जॉब का भी पता करना पड़ेगा।
2: जॉब?
3: भाभी थोड़ा पैर ऊपर। दीदी तुम्हारी नौकरी लग गई क्या?
1: नहीं सुमन आंटी, एडमिशन हुआ है।
2: अरे सुमन, अर्शिया अब विदेश जाएगी पढ़ने। अच्छा सुन, अपने भाई को भेज देना, आज या कल बड़े वाले सूटकेस उतारने थे, लगे हाथों स्टोर की सफाई भी हो जाएगी।
3: जी भाभी, जिस दिन उसकी कॉलेज से छुट्टी होगी उस दिन ले आऊंगी साथ।
1: सुमन आंटी, आपके भाई के कॉलेज में एडमिशन हो गया?
3: हाँ हो गया दीदी, बस अब कहीं उसे काम मिल जाए। दीदी आपकी जान पहचान में किसी नौकरी का पता होगा उसके लिए?
2: अरे उससे क्या बोल रही है, मैं इनसे बोल दूंगी।
3: अच्छा जा रही हूँ।
1: मॉम आप पापा को बोलोगी भी इनकी जॉब के लिए?
2: देखूंगी, नौकरियाँ पेड़ पे लगती हैं क्या? इसका तो रोना ही नहीं खत्म होता, पहले से ही 8 लोग रह रहे हैं एक कमरे में, अब ये इसका भाई भी आ गया, जबकि हमसे बड़ा घर है इनका गाँव में। पर नहीं, सब यही रहेंगे, पता नहीं क्यों आ जाते हैं यहाँ। एनीवेज बेटा, तुम लंदन वाली मासी के यहाँ पर ही रहना और वहीं पर जॉब भी ढूंढ लेना, ओके?
1: ऑलराइट मॉम।
0: संविधान के आर्टिकल 19 के अनुसार हर भारतीय नागरिक भारत में बिना किसी रोक टोक या पाबंदी के कहीं भी अपना घर बसा सकता है, ये उसका अधिकार है। और सेंसस 2011 के मुताबिक 450 मिलियन यानी कि लगभग 37% लोग इंडिया में प्रवासी हैं। तो फिर कुछ लोगों के सपने जायज और कुछ के नाजायज, ऐसा क्यों? कौन होते हैं ये प्रवासी, क्यों शौक होता है इन्हें शहर आने का?
4: जी मेरा नाम आशीष शर्मा है, मैं दिल्ली 2001 में आया हूँ और यहाँ पे मतलब कि पढ़ने के सिलसिले से आया था मैं, तो मतलब कि 10th पास कर लिया, 12th ओपन से फॉर्म भर रखा हूँ मैंने, तो मतलब कि मेंटेन नहीं हो पा रही है, मतलब कि काफी महंगाई हो रखी है, इसलिए मैंने अपना वर्किंग करने लगा हूँ।
5: मेरा नाम जुहा अहमद है, एम्प्लॉयमेंट से देखा जाए तो यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नौकरी भी बाहर ज्यादा अच्छी मिल सकती है।
6: मेरा नाम माता दीन है, मेरा गाँव झांसी है, गाँव से आते हैं हम लोग मजदूरी करने के लिए यहाँ पर, क्या काम धंधा मिले, 500 रुपए मजदूरी बने, रोज के आमदा रोजमर्रा की तरह काम करें।
7: माय नेम इज बालकृष्ण सिंह, मैं दिल्ली में करीब 8 साल पहले आया था। एक्चुअली गांव में पिताजी खेती बाड़ी करते थे, अब मैं घर में बड़ा था, कमाने वाला कोई था नहीं, तो मुझे गांव से दिल्ली आना पड़ा काम के सिलसिले में।
0: किसी नई जगह में रास्ता भटक जाओ तो कुछ पल के लिए अजीब सा डर लगता है, नहीं? और फिर कोई एक सज्जन टकराता है जो सही रास्ता बता देता है, बहुत हेल्प करता है, और फिर सारा सफर आसान लगने लगता है। तो क्यों ना अगली बार आप किसी रिक्शे वाले भैया या काम वाली आंटी के लिए वो सज्जन बन जाए।
8: ये था माइग्रेशन पर यूनेस्को दिल्ली का एक खास प्रोग्राम।

0: आज मैंने धोबी, न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला, बाइक की तनख्वाह, महीने के सारे पेमेंट्स कर दिए हैं। मेरा वॉलेट एकदम हल्का हो गया है। मैं हूँ महक और प्रोग्राम है खाना बदोशों की दुनिया। खर्चों का तो वैसे कोई अंत ही नहीं होता है, पर अगर सोचा जाए तो हमारे इन्हीं खर्चों से एक्चुअली किसी का घर भी तो चल रहा है ना, या यूं कहें कि किसी की जिंदगी भी तो चल रही है ना?
1: भैया 250 ग्राम मूंगफली कैसे दी?
2: 20 रुपए की है।
1: हाँ देना।
2: आप शायद नहीं हैं यहाँ।
1: तुम्हें कैसे पता मैं इसी कॉलोनी की हूँ? तुम लोगों की कुछ ज्यादा ही खबर रखते हो। तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ रेजिडेंट वेलफेयर ने सभी आने जाने वालों का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कहाँ है?
2: अरे बिटिया नाराज ना हो, हम पिछले 10 साल से यहाँ रहते हैं, हम भी इसी कॉलोनी के हैं। वो देखो सामने गली के कोने में जो इस्त्री करने वाली बैठी है ना, वो हमारी घरवाली है।
1: वो उस हरे बंगले की दीवार के आगे
2: जी
1: जो प्रेस करती है वहाँ, वो तो तिवारी अंकल का घर है।
2: तिवारी जी बड़े सज्जन आदमी है, अपने घर के नीचे का कमरा दिया हुआ है, हम वहीं रहते हैं। किराए देने की जगह हम उनके फ्री में कपड़े प्रेस कर देते हैं और मेरी दोनों बिटियाँ उनके घर में खाना भी पकाती हैं। तो बस भगवान की बड़ी कृपा है।
1: फिर तो तुम्हें सभी जानते होंगे यहाँ।
2: कुछ दिन पहले यहाँ नुक्कड़ पर दो लड़के कॉलोनी की एक लड़की को छेड़ रहे थे, तो हमने खींच के चप्पल दे मारी। उस दिन से आज का दिन कभी नहीं दिखे दोनों। इलो बिटिया तुम्हारी मूंगफली।
1: सॉरी मैं आप पर यूं ही चिल्ला दी। आप ही के यहाँ पर मैं अपने और अपने पति के कपड़े इस्त्री करने देती हूँ। सॉरी। हाँ
2: अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बिटिया, कोई बात नहीं।
0: इस मूंगफली वाले भैया की तरह कितने ही ऐसे प्रवासी हैं जो शहर में अपनी पहचान किसी न किसी तरह बनाने में लगे ही हुए हैं।
3: मैं फर्रुखाबाद से दिल्ली आया हूँ करीब 10 साल पहले। यहाँ सिलाई का और लहंगे का काम करता हूँ मैं। यहाँ पे मतलब 300-400 लड़के यहाँ साथ काम कर रहे हैं अलग अलग कारखानों में पूरी दिल्ली में। हम लोग चले जाएंगे, काम बंद हो जाएगा तो काफी लोगों को नुकसान होगा, होटल वालों को नुकसान हो जाएगा जहाँ से हम खाना खाते हैं। एक दूसरे से काम चलता है एक दूसरे का, तो उसी में मकान किराए भी निकालते हैं और होटल से खाना भी खाते हैं, तो कड़ी बंदी हुई है, एक दूसरे से चलते रहती है पूरी।
4: मैं जिला बलिया का रहने वाला हूँ। पहले दिल्ली में आया था, मैं डेंटल फैक्ट्री में काम किया था, फैक्ट्री बाहर गई पर मैं गया नहीं यहाँ से। मैं कार भी सीख लिया, ड्राइविंग भी सीखा इसी रिक्शे चला करके। ये ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास, कार भी चलाता हूँ और ऑटो भी चलाता हूँ, बस यही तो है।
0: भारत में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार करीब 60% प्रवासी पुरुष और 40% प्रवासी महिलाएं बेहतर विकल्पों के लिए गांव से शहर की ओर आती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पापा भी 15 साल पहले शहर आए थे। अब चाहे मैं ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम करूं या रिक्शे वाले भैया रिक्शा चलाएं, हम दोनों ही तो मेहनत कर रहे हैं ना, पैसा कमा रहे हैं और अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर नजरिए में इतना फर्क क्यों? थोड़ा सोचिए और अपने रोजमर्रा का व्यवहार बदलिए।
5: ये था माइग्रेशन पर यूनेस्को दिल्ली का एक खास प्रोग्राम।